जोजलपा थौ नेपाल सम्बचिन्छ सौ पी खुद अनलागा तृतीय थो रेडियो नेपाल ख नेना दिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। सरकारी प्रवक्ता नापा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल नेपाल भारत सीमा हाठ्या कूटनीतिक सल असन हङ्केता सरकार ज्यायना चनागु थयादिगुदु मन्त्री परिषद बैठक या कोछिनाथ सार्वजनिक आयोग झोले प्रधानमन्त्री संसदीय नुआना दिगु नोचुया विशेष संसा कमी हेस शिक्षा मन्त्री पोखरेल वार्ता माध्यम सीमा कचवन हङ्के मागु लिहे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बबिया दिगु थयादिल थिति इले सीमा अध्ययन नापाया संयन्त्र तेगु प्रतिवेदन नेपालय भूमि भारत छेला चोङ्गु जुइ फु व भारतीय भूमि नेपाल छेला चोङ्गु खना प्रधानमन्त्री अजु चागु खजक संसदे नेथना दिगु मन्त्री पोखरेल धुवाथुका दिल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण ज्याजो युएनइपी स ओजन तहयाता सेङ्किगु पदार्थ तेगु व्यवस्थापन व न्यूनीकरण नापाया मोन्ट्रियल प्रोटोकल या छेलाबुला नापाया विशेष स्वीकृति आगु मन्त्री पोखरेल कना दिल मन्त्री पोखरेल भूमि हाठ्यान हङ्केगु समिति अध्यक्ष पदे बलभद्र वास्तोला व सदस्य पदे अमीर प्रसाद न्यौपाने पद्मिनी सोती व डाक्टर रेहेना श्रेष्ठ यता नियुक्त यनागुन जानकारी ब्याय दिल मन्त्री पोखरेल भदौ 23-24 गते या प्रदर्शन या झोले जुगु छाँका तेगु जाँचबुझ या यता निसोङ्गु आएको दुतबीको प्रतिवेदन नेथङ्गु सुरक्षा संयन्त्र हके अध्ययन सिफारिस या यता निसोङ्गु अध्ययन समिति या ज्या नि पी ज्ञानुया नितिन तनेगु कोचिगुदु मन्त्री परिषद या बैठक सरकार र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेल यता सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदे बडुवा यागु कोचिनागुन मन्त्री पोखरेल जानकारी ब्यादिल भारत भ्रमण झोले दिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछाने व भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहदथी नाप्ला ज्याजुगुदु मिगजुगु नाप्ला ज्याझोले नेपाल भारत स्वापु थथयता बालाकेगु लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरक्षा कालबिल व निगुदे दथिया राजनैतिक दल त राजनीति दल त दथिया खल सला सहल हो खलाबला नापा ज्या विशेष विचार कालबिल जुगु जानकारी बिगुदु थोयेझोले मिगय सभापति रवि लामी छाने व भारतीय जनता पार्टी भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीन दथिना सहल जुगुदु भाजपा मुख्यालय नु दिल्ली मिगजुगु नाप्ला ज्याझोले लोकतान्त्रिक बोती सार्वजनिक खलाबला व वैगु नेतृत्व देखेको विशेष ल्याम पुस्ता मिते फैगु भाला विशेष विचार कालबिल जुगु कनादिगुदु प्रतिनिधि मण्डल या तलसकुसैया से अध्यक्ष नवीन मङ्का सभ्यतागत विरासत सांस्कृतिक स्वापु व जनस्तर तक सेनलाकेको विशेष लिदंसा कया भारत नेपाल दतिया सेनलागु ऐतिहासिक स्वापु विशेष जानकारी ब्यादिगु खस अध्यक्ष नवीन भाजपा पार्टी या लपु विचारधारा संगठनात्मक संरचना व जनमुखी राजनैतिक बोती नापाया विचार या त सोया विचार या त सोया जानकारी या कदि गुख अध्ययन सभापति लामी छाने व भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर दथिन मिकह नाप्ला ज्या जुगु नेपाल भारत विकास साझेदारी योजना स्तर तक स्वापुत विशेषण सल जुगु थागुदु नु दिल्ली रासोपा सभापति लामी छाने व वेकया प्रतिनिधि मण्डल नापा नाप्ला दुगुली लस्ता जागु भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर सामाजिक सञ्जाल पाके नेतना दिगुख सभापति लामी छाने नेतृत्व या प्रतिनिधि मण्डल भाज पाया बोने न्यानु यङ्क या भारत मण्या नीति सोमबार नौ दिल्ली छाया दिगुख भारतीय विदेश मन्त्रालय नेपाल भारत दथुया सीमा कसौँ याता पलिस्ता या यता निगुदे दथुया संयन्त्र पाखे नङ्केगु धुवाथुक गुदु मन्त्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवालन हु दिल्ली गोसागोगु नियमित पत्रकार मुज्या स निगुदे दथुई सीमाङ्कन या ज्या अथे गुई च्याको प्रतिशत पुहने धुङ्कको जानकारी ब्यादिल नेपाल या प्रधानमन्त्री उपराष्ट्र मन्त्रालय या पाखे सीमा या विशेष वोगु लिपाङ्गु ख न्युङ्गु नेस प्रवक्ता जयसवाला नेपाल भारत दथुया सीमा मामिला निगुदे दथुया विशेष जुगुली थोक विशेष छुन सोङ्गो शोकगु पक्ष फाला मदैगु नाफा जानकारी ब्यादिल
प्रतिनिधि सभा बैठकै प्रतिपछि दल त्यसम्मिक विरोधी धुम्कानी बैठक जेठ 25 गते तक्कया नीति दिका तगुदु बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नापाया विपक्षी दल राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता व अखण्डता विषयसँग छुन सम्झौता जुई मफुको नेथासे प्रधानमन्त्री थगु धारणाली तकाया मागु बिच तगुदु सभामुख डोलप्रसाद अर्याला विपक्षी दल त्यता कार्यसूची सहे दुहा मे ग्वाली या त इले इले इनाफियाना दिगु ख बजेट नापाया महतन्जाको विशेषण सल या मागु लि थथगु थासे चुना बैठक न्याकेता ग्वाली या त वेक्ल इनाफियाना दिगु ख विपक्षी दल या संसद सभामुख इनाफिया त वास्ता मयासे मड्डीको विरोधी या धुम्कानी बैठक थोए जेठ 25 गते सोमबार सुतसिया जिन्छ त इतक नीति दिका तगुदु सभामुख इनाफलिपा नापा विरोध या त मड्डीक न्याका चोने धुम्कानी सभामुख अर्याला विपक्षी दल या सांसद यता पालम्पा नुवाया त यी फ्याना दिगु ख थोए झोले नेपाली कङ्ग्रेस या सांसद अभिषेक प्रताप शाह प्रधानमन्त्री या नोचु आपत्ति जागुली फिङ्के मागु धया दिगु ख अध्ययन श्रम संस्कृति पार्टी सांसद हर्कराज राई देया सिमाना ओ सार्वभौम सत्ता माकेको विषयसँग फुकन दल छप्पा जुई मागु ओ प्रधानमन्त्री संसदे बोटिकया माफी फने मागु कना दिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद खुसबु ओली प्रधानमन्त्री या नोचु कूटनीति कानुनी राष्ट्रिय सुरक्षा स्थापन यो कोहे खा लाकी गुली प्रधानमन्त्री दल व राज्य निकाय सन्थुज्यागु नोचु या त माकेगु तोपुगु कुत यासा मेगु झाका दुहावे फैगु ध्या दिल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद युवराज दुलाल राष्ट्रिय सुरक्षा विषय फुकन्तल्या मङ्का विषय जुगुली प्रधानमन्त्री या नोचु विषयसँग प्रधानमन्त्री या दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धारणा छुख सदन या त जानकारी याके त इनापेना दिल नेकपा एमाले सांसद गणेश सिंह ठकुना देया कार्यकारी प्रमुख सदने तगु नोचु या दीर्घकाल तक राजनीतिको कूटनीति कथन लिचु लागेको कना दिल वया लियु विपक्षी दल या सांसद तेगु विरोधी आहे हुनी सभामुख डोलप्रसाद अर्याला प्रमुख प्रतिपक्षी दल या नेता भीष्मराज आङदाम्बे या त नुया त यी फ्याना दि धुम्कानी वेक्ल यी मकासे विधेयक प्रमाणीकरण नापाया राष्ट्रपति या कार्यालयसँग वोगु पौ बोना बैठक दिका दिगु ख राष्ट्रिय सभा मिगा बैठक सांसद यसमा प्रतिनिधि सभासँग प्रधानमन्त्री भारत नापा बहुआयामिक स्वाफु अख बिया दिगु नोचु या त कया मभिङको तले बैठक या मभिकेगु अडान क्या धुम्कानी बैठक दिगु ख बैठक यहाँ साता आकाजाका इले सांसदसँग नेपाललाई एकको थासे भारतीय जमिन कोटेला तगु दु धका देया कार्यकारी प्रमुख संसदीय रोष्ट्र मेदना नुमायागु कूटनीतिक मर्यादा अख जुगु धासे थथे सदने वया माफी फोने त बिया दिल राष्ट्रिय सभा बैठक थौ निनेसिया झिनेता इजुया झिङ्यागु मिनेटे चुनिगु कोसादु प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा अदालत जनविश्वास उपकेता कार्ययोजना दिएका निज्या त बिया दिगुदु संवैधानिक व न्यायिक पत्रकार मञ्च पदाधिकारी नापाया नाप्ला ज्याजोले प्रधान न्यायाधीश डाक्टर शर्मा थथे जनता आशा खनिगु याना न्यायालय भिङ्केगु नीति ज्या दिएका निज्या त सनागु दया दिल वेक्लन थप्न नुहाना मखु ज्यासय न्याय लगाया त भिङ्केता निर्माण कथन जुइता सनागु ध्यादिश सर्वोच्च न्यायाधीश त्यता लागा तोके याना निज्याके त सोयागु ध्या दिल सुदूर पश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री नापा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलीय नेता कमल बहादुर शाह या त दलीय नेतासँग चिकेको कोसिनासँग लाची तमासम्म दुज थगु कोसिना लि त कया दिगुदु थो नापा पार्टी संसदीय दल दुने खने दया चङ्गु हाट्या थत्ने या नीति पुलाउङ्गुदु प्रस्तावित कया धुम्कानी प्रदेश सभा सदस्य डम्बरी महरा पार्टी एकता ओ बजेट ज्याजो निर्माण या त थ्याबी मागु यी वोगुली थप्न कोसिना लि त कयागु जानकारी बिया दिल पत्रकार मुजिया पखे मुख्यमन्त्री शाह असन्तु सांसद पे नापा सहल यागु बचाउ बिहा दिगु दुसा थुयानिया दलीय नेता सहायता चिकेता मिगहे कङ्ग्रेस संसदीय दलीय अविश्वास प्रस्ताव नापा दर्ता जुगु ख नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समिति बैठक थौ चुनिगु गोसादु समिति सचिव दिनेश थापा मगर विज्ञप्ति पितना दिसे बिहिबार तक नीति बैठक सतागु जानकारी बिहा दिगु ख बैठके पार्टी केन्द्रीय कार्य यलैया सानेपा चुने ट्याङ्गु जानकारी बिगु ख बैठके बुति काइपी समिति फुक दुज पिन्त इनाप यागुदु थोखया विशेष बैठके पार्टी आन्तरिक अनुशासन वोगु उजुरियो भावी कार्य योजना विशेषण सल जुइगु थागुदु अदालत यागु आदेश फैसला
थथे छेलाबुला यामागु विशेषण ध्यानबी मागु स्वपु तैपिनीगु पछ्याउ बिगुदु सर्वोच्च अदालतीय फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय मिग गोसागुगु सल वक्ता पिंस अदालत आदेश फैसला थथ्या नीति छेलाबुला यामागुली बिगु ख सर्वोच्च अदालतीय रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की फैसला कार्यान्वयन स्वपु दुपी निकाय त्यसन ध्यानबी मागुली बिगु ख राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र देया सार्वजनिक प्रशासन या त सेल नाके त लिचोलाई गुह जवाबदेही देखिएको आज नापा अनुगमन पुच यात अझ सक्रिय देखे मागु ध्यादिगुदु सार्वजनिक संस्था देखे जुइगु अनियमितता भ्रष्टाचार थे जागु जा या त दिकेगु नीति मागु छानबिन अनुगमन निगरानी छड्के जाँचो अन्वेषण यागु भाला फोङकेगु झोले केन्द्र थगु अनुगमन पुच यात अझ सेलनाके त सङ्घुख केन्द्रीय प्रवक्ता नापा सहसचिव नारायण प्रसाद भट्ट आयागु सरकार निश्वनेव पिथङ्गु सच्छी धलया जा झोले नेथङ्गु कथ देशे सुशासन प्रवर्धन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सार्वजनिक सेवा प्रवास पारदर्शिता जवाबदेहिता उपके मागु ज्याखे अनुगमन या ज्यायता थ्याबियागु थ्वात्विका त गुदु आदेश पिनेबुख अफ्रिकी दे कङ्को वा युगान्डा नेनाउनाचङ्को इबोला भाइरस नुगु हाठ्याता विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ अन्तर्राष्ट्रिय चिउता या जन स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा यागुदु अफ्रिकी देशे इबोला संक्रमण खने दे धुङ्का नेपाल सरकार न जोखिम या त वाचाका निगरानी नापा मा कथया तयारी याना चङ्गुदु नेपालले इबोला संक्रमित मनु त धुहा वे फैगु धासे थिति नाका स्वास्थ्य कर्मी छेला तगुदु अमेरिकी सेना इरान कस्म टापी आत्मरक्षात्मक कार्यवाही यागु धागुदु अमेरिकी सेना सामाजिक सञ्जालले छगु विज्ञप्ति पिथसे आक्रमण यानागु धागु ख इरान जलाखला देश आक्रमण यागुने उकियालिस बिगु अमेरिकन धागु ख कुवेत बहराइने इरान यागु मिसाल वा ड्रोन या त अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणालीको त छोगु ख रुस युक्रेन थिथि सहरे यागु आक्रमण लाना मोतिन झिङखुमा मनु त सिगुदु थु आक्रमण या त कया मस्को थापिसन त धङ्गु सैन्य कारबाही यागु थागुदु निमा मस्त नापा दिनो प्रोए झिन्छमा व राजधानी कियेबे न्यामा याना झिङखुमा मनु सिगु ख युक्रेन यागु हमला या त लिस बिगु रुसी रक्षा मन्त्रालय धागुदु रुस थपिनीको आज पुङ्गु न धागुदु आ मौसम जानकारी थोन्दे हिमालय पहाडी लाग्य लुम्बिनी सुदूरपश्चिम तराई या छगुनीको थासे वा वैगु धुकुमादु मधेस कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या तराई लाग आपलान तानुगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु थाउँ सोनिगले नि गुगुनिसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस यादतिको आज लुइगु धुकुमा यागुदु नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निर्णय दिशा शुभ

0: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यही सकिन्छ। अब यसपछि केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हस्त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौ। नमस्कार।
1: हामी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको यो केन्द्रीय प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ। यस बेला साँझको 6 बज्न लागेको छ। अब सुन्नुहुनेछ मैथिली भाषामा समाचार, त्यसपछि सुन्न सक्नुहुनेछ प्रदेश समाचार।
2: रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्र छौ, मैथिलीमै समाचार सुनल जाय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीक सभापति रवि लामिछाने आ भारतक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भेल अछि। भेट पश्चात प्रधानमन्त्री मोदी अपन सामाजिक सञ्जाल एक्समे सभापति लामिछाने सँग भेटला पर अत्यन्त खुशी लागल उल्लेख कयलनि अछि। सँगै ओ सभापति लामिछाने सँग साझा समृद्ध भविष्यक लेल निकटसँ सहकार करबाक आ हुनक चाहनाके स्वागत आ पूर्ण रूपमे समर्थन करबाक उल्लेख कयलनि अछि। प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल पहिल पड़ोसी नीति अन्तर्गत एक प्राथमिक साझेदार राष्ट्र भेल आ दुनू देश बीच रहल विशेष आ बहुआयामिक सम्बन्धके आओर उच्च स्तरमे पहुँचबाक लेल नया सरकारसँ सहकार करबाक लेल उत्सुक उल्लेख कयलनि अछि। भेटक अवसर पर हुनका लोकनिक बीच नेपाल भारत सम्बन्ध, रासपा आ भारतीय जनता पार्टी बीचक सम्बन्ध, दुनू देशक बीचक आपसी हितक सँगै विविध आयाम सभक विषयमे छलफल भेल छल। ओहि अवसर पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदीक प्रमुख सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री सहितक उपस्थिति छल। एहिना नेपालक दिशसँ सभापति लामिछाने, हुनक धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रासपाक नेताद्वय विपिन आचार्य आ दीपक बोहरा तथा नया दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासक उच्च अधिकारी सेहो सहभागिता छल। भाजपाक अध्यक्ष नितिन नवीनक निमन्त्रणमे सभापति लामिछाने भारतक 5 दिनक भ्रमणक लेल सोम दिन नया दिल्ली प्रस्थान कयलनि। एहि बीचमे सभापति लामिछाने मंगल दिन भारतक गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, भाजपाक अध्यक्ष नवीन सहित उच्च पदाधिकारी सँग भेटवार्ता कयने छलथि। राष्ट्रसभाक आजुक बैठक सेहो प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेपाल भारतक सीमाक विषयमे देल गेल अभिव्यक्तिके विरोधमे प्रतिपक्षी दल सब अवरोध कलाक बाद स्थगित भेल अछि। प्रतिनिधि सभाक रवि दिनक बैठकमे प्रधानमन्त्री शाह, हम प्रधानमन्त्री भेलाक बाद जानकारी पलौं जे भारत नेपालक जमीन मात्रे भ नेपाल सेहो भारतक जमीन बहुत ठाममे हड़पि कऽ रखने अछि, से देल गेल अभिव्यक्तिके विरोध करैत प्रतिपक्षी दल सब लगातार राष्ट्रसभामे विरोध करैत आबि रहल अछि। सभाक आजुक बैठक सेहो शुरू भेल लगते सांसद सब उठि कऽ विरोध शुरू कयने छलथि। बैठकमे नेपाली कांग्रेसक सांसद सुनील बहादुर थापा, प्रतिनिधि सभामे प्रधानमन्त्री शाह अपरिपक्व, गैर जिम्मेवार आ तथ्यहीन अभिव्यक्ति द राष्ट्रहित विपरीत काज कयल कहैत क्षमा याचना कयल जेबाक मांग कयलनि। एहिना ओ राष्ट्रीय हितसँ जोड़ल गेल विषयमे भ्रम सृजना करबाक लेल छूट ककरो नहि रहल कहैत नेपाल भारतक द्विपक्षीय सीमाक विषयमे तेसर पक्ष समावेश करब नेपालक हितमे नहि रहल आ एहिसँ थप अनावश्यक तनाव सृजना कऽ सकबाक बात बतौलनि। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद विष्णु बहादुर विश्वकर्मा, प्रधानमन्त्री शाह नेपालक हित विपरीत बाजि कऽ नेपालक भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्तामे आँच पहुँचबाक काज कयल कहैत प्रधानमन्त्रीक त्यागपत्रक मांग कयलनि। एहि तरहे नेकपा एमालेक सांसद संजना देवकोटा सदन उठि कऽ प्रधानमन्त्री शाह द्वारा देल गेल अभिव्यक्ति राष्ट्रहित, राष्ट्रीयता विपरीत तथा गैर जिम्मेवार पूर्ण भेलाक कारण एहन अभिव्यक्ति द पदमे बैस रहब प्रधानमन्त्री शाहक त्यागपत्रक ओ मांग सेहो कयलनि। बैठकमे अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल एकैटा विषयमे लम्बा समय धरि चलि रहब कार्यसूचीमे रहल विधेयक पारितके प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक लेल आ राष्ट्रीय सभाक गरिमा कायम कऽ आगू बढ़बाक लेल सांसद सभसँ आग्रह कयलनि। अध्यक्ष दहाल राष्ट्रसभा हित राष्ट्रहितक पक्षमे सरकार आ प्रतिनिधि सभाके सेहो सुझाव सहित गाइड करयवला संस्था भेलाक कारणे प्रधानमन्त्री शाहक अभिव्यक्ति, सांसद सभक धारणा देशमे उत्पन्न परिस्थितिके सम्हारि कऽ राष्ट्रसभा आगू बढ़ि सकबाक बात बतौलनि। अध्यक्ष दहाल अन्य विषयमे सहमति आ छलफल कऽ आगू बढ़ि सकलाक भेलाक बावजूद कार्यसूचीमे रहल वैकल्पिक विकास, वित्त, परिचालन विधेयक आगू बढ़ेबा में सहयोग करबाक लेल सांसद सब सँ आग्रह कलाक बाद सांसद सब उठि कऽ विरोध जारी रखलाक बाद बैठक स्थगित कयलनि। सभा के एहि सँ पहिने दूटा बैठक सेहो कार्यसूची में प्रवेश नहि कऽ स्थगित भेल छल। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक जेठ 26 गते मंगल दिनक 1:15 पर बैसत। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा संचार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र के प्रविधि मैत्री बनाकर विकास करबाक लेल मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। सूचना तथा संचार मंत्रालय में आई बैसल विषयगत समिति के बैठक में मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा जनता के सचेत आ शिक्षित बनायब मीडिया प्रमुख जिम्मेवारी रहला कारण लोक कल्याणकारी विज्ञापन के नियमन करबाक लेल आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा पुराना कानून सबके समानुकूल परिमार्जन आवश्यकता अनुसार नया कानूनी सुधार के प्राथमिकता दैत संसद के प्रभावकारी कानून निर्माण करबाक संस्थाक रूप में सुदृढ़ बनायब सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा सूचना तथा संचार क्षेत्रक समस्या समाधान में तीन तहक सरकार बीच समन्वय और सुदृढ़ बनेबाक लेल व्यवस्थित संयंत्र आ एकीकृत प्रणालीक विकास आवश्यक रहल बतौलन। बैठक में सूचना तथा संचार मंत्रालयक सचिव लक्ष्मी कुमारी वस्नेत सूचना तथा संचार क्षेत्रक निकाय सब विषयगत समस्याक एकीकृत जानकारी आवश्यक रहल बतबैत प्रदेश आ स्थानीय तहक बजट विनियोजन में संचार तथा सूचना क्षेत्रक विकास के प्राथमिकता देल जेबाक बात पर जोर देलनि। प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा न्याय प्रणालीक सुदृढ़ीकरण के लेल बार आ बेंचक सहकार जरूरी भेल बतौलनि अछि। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन आई काठमांडू में स्वागत तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत के विदाई कार्यक्रम में ओ नया क्षेत्रक सुधारक लेल बार आ बेंच भी सहकार भेला पर न्याय संपादन सहज हेबाक बात बतौलनि। विधि के शासन संविधान मानवाधिकार संरक्षण में सर्वोच्च बारक महत्वपूर्ण भूमिका होइत अछि। प्रधान न्यायाधीश शर्मा कहलनि बेंच आ बार एक आपस में मिलकर काज करबाक चाही। पूर्व प्रधान न्यायाधीश राउत बार आ बेंच भी सुमधुर संबंध विगत सँ रही आयल। सर्वोच्च में मुद्दा संख्या बढ़त गेलाक कारण एहि के घटेबा दिस ध्यान देबाक लेल सुझाव देलनि। नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन होयबाक बात पर जोर देलनि। मधेसक अधिकांश स्थान में एक सप्ताह सँ 40 डिग्री सेल्सियस सँ ऊपर के तापमान बढ़लाक कारण एहिठामक जनजीवन नकारात्मक प्रभाव बढ़ि गेल। लू लगवाक महाकारी आ महामारी फैल सकबाक जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय जनकपुर सचेत करौलक अछि। लू के कारण अत्यधिक थकान हेबाक कमजोरी हेबाक प्यास लगबाक बेहोश हेबाक उल्टी हेबाक सन सहित जोखिम के आमंत्रित कऽ सकैत अछि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरक फिजिशियन डॉक्टर दिग्विजय ठाकुर लू सँ बचबाक लेल घर भीतर और ठंडी ठाम में रहबाक लेल रौदा में नहीं चलबाक लेल हल्का कपड़ा लगेबाक लेल घर बाहर निकलित काल माथ के छुपि कर रखबाक लेल पानि आ झोल पदार्थ पर्याप्त पीबाक लेल सुझाव देलनि अछि। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय जनकपुरक प्रमुख राजीव झा एहि बार समय में मानसूनी वर्षा हेबाक संभावना कम देखल गेल बतौलनि। झा जेठ 18 गते सँ आसिन 13 गते धरिक अवधि के मानसूनी समय स्वीकार भेलाक बावजूदो एखन जेठ मास सम्पन्न होबय लगलाक बावजूदो एहन गर्मी भेल बतौलनि। डॉक्टर ठाकुर गर्मी सँ बचबाक लेल प्यास नहि लागल दिन कम सँ कम 8 गिलास पानि पीबाक सुझाव देलनि अछि। ठाकुर जलक कमी सँ शरीर में डिहाइड्रेशन के समस्या आबि सकबाक चर्चा करैत पानि के बदला में बियर कॉफी आ सोडा सन पेय पदार्थ ई हानिकारक हेबाक आ बात ओ बतौलनि। नेपाल प्रहरी 5 किलो गाजा आ 14 ग्राम सँ अधिक ब्राउन शुगर सहित 4 गोटे के पकड़लक अछि। विशेष सूचना के आधार पर इलाका प्रहरी कार्यालय अनार मानी सँ खटल प्रहरी टोली बिरतामोड़ नगर पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित एक घर सँ 5 किलो 90 ग्राम गाजा बरामद कयल। जिला प्रहरी कार्यालय झापा के निमित्त सूचना अधिकारी सुमन बानिया जानकारी देलनि। ओहि क्रम में मादक पदार्थ कारोबार में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी अर्जुन धारा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के 30 वर्षीय विनोद मगर भोजपुरक हतुआ गढ़ी गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 के 20 वर्षीय सागर राय के पकड़लक अछि। एहि बीच झापा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 ठगन डुब्बा क्षेत्र सँ प्रहरी ब्राउन शुगर सहित 2 गोटे के पकड़लक अछि। भारत सँ नेपाल दिस पैदल अवैध काल व्यक्ति पर शंका लगलाक बाद मंगल दिन प्रहरी चौकी टांगन डुब्बा सँ खटल टोली चेक जांच करबाक क्रम में दमक नगर पालिका वार्ड नंबर 10 निवासी 32 वर्षीय सूरज राय के संग सँ 6 ग्राम 1 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद कयल प्रहरी जनौलक अछि। मोरक के विराटनगर महानगर पालिका वार्ड नंबर 3 के 42 वर्षीय बाबूराम दर्जी के संग सँ सेहो प्रहरी 8 ग्राम 70 मिलीग्राम ब्राउन शुगर देखल जायवला पदार्थ बरामद कयने छल। पकड़ल गेल दुनू गोटे के थप अनुसंधानक लेल जिला प्रहरी कार्यालय झापा आनल गेल। प्रहरी जनौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक राजधानी नया दिल्ली में एक होटल में भीषण अगलगी सँ कमती में 21 गोटे के मृत्यु भेल अछि, दर्जनों घायल भेल समाचार प्राप्त भेल अछि। पिछला वर्ष में राजधानी में भेल सबसे घातक अगलगी के रूप में एक घटना के प्रहरी पुष्टि कयलक अछि। दिल्ली के दक्षिणी भाग में रहल भीड़ भाड़ युक्त बस्ती में अवस्थित बेड एंड ब्रेकफास्ट फ्लोरिस स्टे होटल में बुध दिन भिनसर अगलगी भेल। आई तीव्र रूप में फैलला पर भवन भीतर रहल पाहुन आ कर्मचारी ओहिठाम रहल छल। आप ओ उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहला पर 40 से अधिक घायल के उपचारक लेल निकट के अस्पताल में भर्ती कयल गेल। प्रहरी जनौलक अछि घटनास्थल में 8 दमकल परिचालन का अधिक समय धरि आई के नियंत्रण में लेल गेल। अधिकारी के अनुसार घटना पश्चात गंभीर दुख व्यक्त करते 21 गोटे के मृत घोषित कयल गेल। प्रहरी आपातकालीन सेवाक टोली सब एखनो घटनास्थल में तैनात है। थप खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहल बताओल गेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।